0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

0: बक्सनगर आईटीआई आव कोर्स खैनानि बागै कमिमलाय नाहारजागै दङ कोर्स संखा प्लाम्बारो काइसिदक ड्रेस मेकानिक एकबा ड्रेस मेकिंग दङ काय थामसि थाम मेसना दङ काय ब्रैसि ड्राइवर काम मेकानिक्स दङ काय नैसिदक आ कोर्स खालामनानै बागै रोंमारि होननानै नांनाय इया मानिन' क्लास एइट पास आबो तिनिनो पाइथाकनि सालमारि सारिकनि दामब्रैनि बिसिंगन' कमेंब्लाय रोनानै नांनाय दा कैसा दङ बखे त्रिपुरा स्टुडेन्टस हम आरो आया होननाय कैसा दङ आब' आबुनि ट्रेनिं रोनानै बा नाहारजाखनानि साल सिनि बिसिंगाव साल सिनि बागै ट्रेनिं नाहारजाखनाय सालमारि ओंखा अ सेप्टेम्बर दाननि साल जिबा सालमारियाव फुंनि दामजिसा निसिमि दिबनि दामसिनै जरा आबुनो कारिब एस टि पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप नि बागै दाबो कयमंब्लाय नाहारजागै दङ कयमंब्लाय रोनानि पाइथाक सालमारि अक्टोबर दाननि साल थामजिसा सालमारि जरा दाबो काहामखे सिनानि बागै वेबसाइट नायमाननाय https://scholarship.gov.in वेबसाइट आसो जरा जों कक्थुम्र खोनालायखा
1: सेबुखौ बरक लांमोनि गावनो जों दाबो खोनालायानो पहिलानो दङ आंनि आफाबो मेनेजार जुनियर एक्जिक्युटिभ एयरपोर्ट अथरिटिनि बखाखै बुक्स आसुखाय दङ थामरा चार्जि चुकु एबा 389 रोंमारि ओंनानि नांनाय बिटेक एबा खाबाय बिटेक ओंनानि नांनाय दायो उमर खाजाब दङ टिचारनि सिमि 32 बिसिंग उमर दंनाय रक्सिमिन बरक एप्लाय खायमानाय फियाबा रायदारगै एस सि एस टि अबाहायरंनि बागै उमर गेसेसो हलैरुमु दङानो दे अनलाइन एप्लाय खायमानाय आपुनि पाइथाक साल तिनि नहिनिमानो एबा खेबा 7 सेप्टेम्बर बिनि कम्पिउटार तै एग्जाम गानो एबा खेबा नंनि जेफोर रिटर्न एग्जाम उंनाय आबो उलो साग्लायि रिजेंनाय नै साजाखा तै कैसा तै कैसा दङ एमओ आई टी बिपिनि बखाखै अ बुक्सा सुखथाय गारि जाखा बेखलै दङ नैरा चार्जि नै एबा 282 टा बुक्सा सुखथाय दङ रोंमारि ओंनानै नांनाय एम बि बि एस एखाबा एम एस डिग्रि ओंजाक उमर खाजाक दङ 30 जरा एबा खाबा 30 इयर्स ओंखाय अनलाइन तैनरक आबुनो एप्लाय खायमानानो आब' पाइथाग सालमारि दङ अनलाइन टे एप्लाय खायनानै 4 सेप्टेम्बर एबा खाबा 8 सेप्टेम्बर जरा ओंखे आबुनि आमजग मुखफुरनाय आब' उल' साग्लाय रिजाखनाय तै कैसे
0: आव आंनि आफा दङ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बेडेकनि बेखाखै बेबागै बुक्स आसुखथाय कायजि थामाव सुबुंनानि कयमंब्लाय सानजाखा बुक्स आसुखथाय ओंखाय काउन्सिलर आन्डिजारनि बागै गायब्रै एस टि रंनि बागै गायब्रै एस टि एच सि रंनि बागै गायनै बक्स आसुखथायका क्लिनिकेल साइक'ल'जिस्ट इंखेबा साइकाट्रिक ससियेल वार्कार इंखेबा साइकाट्रिक नार्स अव ताल सिसानि बागै लांजाखनाय कमेंब्लाय रोनानि बागै पाइथाक सालमारि अ बिसिनै सेप्टेम्बर तालनि साल सि सालमारि जरा निकमांखा अफिस अफ द मेडिकल सुपारिन्टेन्डेन्ट मडार्न

0: क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखागुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसन्धानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमंत्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः, घटनायाः प्रारंभिक मूल्यांकनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। CMO कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति, तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। NDRF, अग्निशामक सेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेङ्कटेश्वर महाविद्यालयः दुःखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतनक्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत्। बिहारे गंगा, गण्डक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्तिक्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तरप्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात

0: एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান রবি কিরণ।

0: আকাশবাণী আগরতলা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রথমে ইংরেজি এবং তারপর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শিলং কেন্দ্র থেকে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে।
1: Long-standing cultural and political connections.
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू

0: जाता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते
2: हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
1: जी।
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है, जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए।
1: जी।
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ।
1: आप ये कहना चाहते
2: जी,
1: हैं?
2: जरूर।
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
2: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है।
1: जी।
2: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है।
1: जी।
2: जैसा कि हम देख सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं, उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है।
1: जी।
2: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
2: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी।
1: जी।
2: तो सबसे पहले

0: हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स,
1: जी
0: जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या
0: लोग
1: तो
0: हैं,
1: वंचित वर्ग भी कह सकते
0: वंचित
1: हैं।
0: लोग जो
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं
1: जी
0: और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज,
1: जी
0: जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं। कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: उन सबको शामिल करती है।
0: शामिल करती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी
1: जी
0: लड़कियां होती हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं या
1: ड्रॉप आउट्स हम
0: ट्रांसजेंडर,
1: जिसको
0: ड्रॉपआउट
1: कहते हैं।
0: रेट्स जिसको
1: जी
0: हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किन
0: इन
1: में, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
1: जी
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सकें, इन पर काम कर सकें, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अब हम ये जानना चाहेंगे, विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या-क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते
1: तो
0: हैं
1: सुरक्षित वातावरण।
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की। तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉपआउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है।
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बच्चियों
1: जी
0: का,
1: जी
0: लड़कियों का।
1: हाँ
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं,
1: जी
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती हैं।
0: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम केजीबीवीज भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे केजीबीवीज हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम। ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति, उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।

0: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
0: जी,
1: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
0: जी।
1: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
0: आदिवासी लोग, जनजातीय लोग
1: है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो हमारी टेक्स्ट बुक में, इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
0: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
1: जी,
0: इसका शायद ये है।
1: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
0: जी।
1: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
0: जी।
1: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
0: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
1: जी,
0: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो
1: हाँ,
0: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
1: या हाँ, तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है, लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
0: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे
1: जी।
0: तो अब आते हैं NCERT पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि NCERT के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
1: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज
0: जी,
1: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
0: जी।
1: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें, जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना,
0: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
1: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
0: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
1: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें की दो हमारे फ्रेमवर्क है, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी

0: स्तर पर लागू करना
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि, है ना? जी
0: जी
1: जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है। जी।
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है।
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी,
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
1: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ बैठ सकते हैं।
0: जी, जी।

0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी।
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो हैं उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, कि जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग। इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते
0: न्यूट्रल
1: हैं,
0: शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ
0: जी, कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी,
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता।
1: जी
0: उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं जी।
0: हाँ। तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सकें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया, वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@

0: cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: এতক্ষণ শুনছিলেন বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠান আকাশবাণী আগরতলা। এবারে আপনারা শুনবেন বাংলা ছবির গান বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। অনুষ্ঠানের প্রথম গানটি আপনারা শুনবেন ইন্দ্রাণী ছবি থেকে গীতা দত্তের কণ্ঠে।

0: खनाई टोंनाय खाफांनि जत लुकुरोंनो लामसुगो चिनि तिनिनि ब्रिरोकनि पांदा नुगुलो जोंतिनि खनालायनाय टेरेस गार्डनरगै तिनिनि अकग्लाम पांदा जोंनो सेरि सुक्रुबै सानानि बागै चिनि अ पांदा फायसक फायखा बुखुक मंजुश्री कलय बुखुनो लामसुगो चिनि अ पांदाव
1: आ हामबाय बुखुक ननबो ओंखै जतन न खुलुमखा खै नन बेलाय बेलाय खै हामबाय मारिबो हायनाय तां आनो अजागा जरारि मानि बागै तिनि ओ आं खुम रकाय मानि आनि बागान ख्लाइमारकन सानानि बागै आंहरमा बागै
0: आव ओंखे जों तो सायमान गोबां मानो जों बरक रक जेनि बोरै रकन खुमरावनो बिसि हामजागौ जों गोबां खौनो जों सातसा कारगो खुम गायलायो आबनो गारैबो खुमनो गारैबो फल फखलाबा सोंनो गायलायो दे बाक्सा बाक्साबा उ जे जेने मोखैथों रामानि बारानो फानस गायै जों मोखैथों रक खालायलायो हिंके आबनो दिनै जों दिनै जों खोनालायनाय हिंके आं पैला अबनो सोंगानो निनि सातसागाथ' आं थाङै नुगै मानि बेलाहायखैनो जागासो गोरै आसाखै खुमरक निनि मोखैथों थाखैथों आसाखै गायजाग बेलाखेनो खा बासाव दाय दंथगौ दाय आगिनि जे बारि रग' जों गाय मानिया फानो दाबो सातसागा रग' दलि आमजायाव दंनाय रग जों मोखैथों अभाब गोरैखे खुमरावनो अभाब गोरैखे दाबो दङै दंलायो दाय निनि सातसागावबो अमाहायनो गोबांमा पद्रे पद जातनि खुम पद्रे पद जातनि न फल फख्ला दाय मोखैथों रावबो आं नुगै फायखा हिंखे जे नों अमाहाय जे मुसंमानि निनि जे खुमरकन नों आसाखे हान हामजागै नों जे गायखा हिंखे आबाबो फोरनि जे निनि वानसकमा फायखा जे गायनानि नों मुसंमानि दा नाकि नों आगिनि सिमदा हामजागै मुसंगै म याप्रिनो हाखा
1: आव म साना थांखा हंखै त' आं बुफ्रुनि सिमि गायनानि वान सुख हंखै आं आगि जरायफ्रु फान खुमरकन होगा गायो बाराव आफ्रु त' दङ ओंखै हाव आफ्रु फान आं जे बैनि नगो खुमनुं माने सानै आखौ इफान खुमरकन मारखोनो हामजागो दा आफ्रुखौ त' दै ओमफ्राय मेसिन रगबो गोरै थिनक त' हाथाय साखासि हायबा नांगौ तलाव दै ख खगैनाय दै लुयसे खुमनो मोथां आमसोखो खुमरंनो गायदा
0: हामजाकमानि बागै
1: ओंखो उलखा हैफानो आ अर दंफायखे आगरतला दंफायखा ओंखो त' आफ्रुथ' भारा रक्सि दङ ओंखा आफ्रु रग' फानो खुमरक त' जत जरावनोसै सामुं नाङो आफ्रु फानो जों खिसा निजिनि बोखानि मुसुं मानि साननानै होनै मोताय हाथाय रक्त' खिसा मासा नग रग' खायसा सात्राय सक मा रग गोरै दिबा ए आमति रखायना थांखा ओंखै खायसा उनखौ नुग जागोदा मानथ' गैया कुथु

0: हमके नगो हमके नगो निजी खाइके हमके जे नांगमा सुख आरो नखलै हमके ओ बाजारनि पाइ तुमार हमके नों सायमांसि निनि जरा लाइ थांग्राव
1: आबोनो
0: साय अमनो सायनानि रगबुतो सिनि जरा नांबले
1: आबोनो
0: हमके नगो हमके जे नांगमा सुख फात फात फात खलैनाय संखा हंगानसि पाइखा
1: आबोनो
0: इयाम हाइता के जत अम कायमे आनी तो करी चीनी सात साखा रगो मान चीनी नग रगो होता पाराओ जे कईमान माहाई हाओ कईमान माहाई नो ओ साखाओ बो जत नो नंग नाइखा के कईमान पतर पतर बादे फल रग बहन कईमान जो बुफांग बताई रग थाइसु गुंथं ओ सपेदार बड़ो इताब तो कौन फानसी मानथो गया करे इताब तो बाजार जत नो मानथो गम हाई कलम नि बुफांग बेदेक नि हाई फनांग रिजा आबरों तो नंग मथांगी मान खा हंगन सिबुवार फाई पायो खै न मासा मासा खा किसा जत्न तो मा खाइनै न खै तुइ र किसा रेगुलर मारि नाय जे दिनो रिना नांगिया तु फान रेगुलर किसा ताला फि मा खाइनै आब तो सिं बिजिनि बिसिङो फान सिं आम तुइ र खाया फान ताबुं दिनो तो ताबुं दिनो या फान ता बरों मुनि सरक उ आदारि लाइ फान मोबाइल नाइ फान समय काटेउ गा समय र ननु आम तुइ रखाओ सारदगो बेराय नाय खा तामुया कैसे रेगुलार नों टाइम फिक्स खालायै थुइ बासा द्रप फानोंखा किसा तो एक्सट्रा टाइम मारिनाय किसा बैनसे सिगां फान बासाखा बा हर सारिगो बेराय आगि बेराय मानि टाइम न फानो बेरायाखै निनि आ बागानो समय रिखा आम तुइ रख फानो मा खाइसिनै दा आम तुइ रखैनो खाय मेनेज खायता आंखै
1: निनि आरो तो खुमदाले पद नगो जे खुमबा सक नाइथक नाइथक बारो हिंके ओ खुमरावनो नों बाहायके ताला फिखाय ताबो ककने क खुमनो नों ताबो एदिनियाम रफानांखा ताइके बामाना जागावो जिनि आगिनि गमाजाक माजिलता आरोनि निया साचाका वा नगोइखा हिंके खुमतया आमहारो गबामा नगोइखा हिंके बेलाइखेन वानामा सिंजा नों आबोनो नाचटा फुदुदु के बारै तनो जत सिजनि न जत मनि न नि न साचा का वांग नुकमानि हिके आबनो जे नों बाहायके जत्न खायनि नां आबनो किसा साइखनार दे
0: आमो सालायना थांगाङै तो आं आगे नि खुम रग्न बुमथि खेमान खा ताङै हामजा खा आम सालायना थांगाङै तो दैसा
1: लग्नै
0: जरायनि आनि चाइल्डहुड हिस्ट्री नि फायुका
1: आबनो
0: हिके आफ्नो पाराओ पारारगो तंफ्रु आ खुमरगनो मतम मतम आगिन खुमरग तो बेलाइखे मतम मतम
1: बाहायगेना
0: हिंके आब्रंना आं बेलाइखे हामजाखता हिंके आफ्रु फानो किसा आं सायमानो जे अमरग सालायमारो खानाव ता अकरा रगनो अमरग ताग मास मान थगलिया उ जागा सिनि फांसा तंसु
1: खेरेंबार माने
0: तिरग ओ माजि लतारो खुमतय आरो मान फानो कम नङै दङ सायमानो माने आस्ते आस्ते अमरग कमरै दंबायखा हिंके आब्रगनो बाहायखे प्रिजार्भ खायमानो आमो आनबो खाव आफ्रुरगो फान दंता हिंके जखन आं नख खालायखा हिंकेनो आं आमो वान सुखा अबु फांरंनो बजागा मान्न हिंके गोबां मा आमतै अमाजि लतारो खुमतय आरो गिया फानसे ओ खुइ माइकाई रगिया फानसे आगि जे नगो एभेलेबल तो माने आमहाय खुमरग सुनसि प्राय मानथगे आंनि थांखा ताबु खुंखै बेसि नुग माने माहाय फातारनि फायनाय बुफां रगनो मांसि कताल कताल मां नुगु ता हांखै फियाबा बाहाय गोनां खुब कमसि
1: आबोनो
0: खै आमबागै आं चेस्टा खायखाता बाक्सा तो आं पाराव नु रुतुखा आं साबुन आरो
1: बुफां तं किसा साइखनार नि न साचाव
0: हिंखा आं ते केसा थाम प्रब्लेम फायखा हमले आं सादो बुफां कायना थांखाखै अक सातुं ग बेलाय कि सातुं माय भाद्र मासनि सातुं फुरु रग हंखे जेस मासनि सातुं फुरु रग हंखे सात तब आस कत रंगे रानै थांबाय
1: दैरग दं
0: रंगे आफ्रुखे आं ताम खायखा ताबुं दिनो तो मोबाइलनि जुग हंखे आं नेट सार्च खायनायखा बमो माने कुटुं रग्न सज्ज खायमान हिट टलार एन्ड प्लेन्ट आमति ड्रग टलार एन्ड प्लेन्ट माने ओ खरा रग गोथां तंनाय आमति रग्न नाय नाय खेता हांखै जानुं माने ओ चिन पारा रग जे गोथां तं माने ओमहाय माली रग आगि गन्धराज रग आबरं न आमति ओ तिकिउ दु हायिङिन आगिन दिन तं माय बागान खायनाय हिनो केउ एक्स्ट्रा टाइम लियाब्ला हायन तुबुइ काइरि फायखे पाइखा हिंखा हायिङिन आबरग तंना ता आगि गोलखै जत्न रखायजे गियां तेंतेनो बाक्सा कमरि थांबायना हायनो বরক থাকে বা থাকা থাকে বা থাকা থাকা জরা খাবার থাকো আমি তৈরি নাতা আগে।

0: रघुमानिया भीम बार बुतुईरक हंके सोदा किसा हंके लेबू बुतुईरक नो सेबई आमुन बुतुईरक सारखा हंके ताबुक तो नंग हाइनु बु सारी मानु हंके बाजारो स्प्रेयर रोग मानु ताबुक माने सारसा जांगनाय ए आमती रोग दाउई ओ लेबू बुतुईरक साबान बुतुईरक दालगै किसा सारखा हंके नो आमु मुतामुति थांगु हंके थांगै जदि से आस गबां हंकेबा हंके तेकेसा इंगलाईनी बुतुई निम बुतुई बहायन जों आबनो तगैनाय बुतुई खालायनाय आबनो बहाय सारैमान आंबो कन्ट्रोल खालायदा अ पेस्ट रग न
1: हिंखे आव जों आबतो ताबक जों खुमनि सालायग्राखा बे ताबक जे साना थांगा फल कायमानि निनार ताबो फल लग नों किसा साबा साका अ फल लग नखे बाहाके नों तरै लगैतन गाहामके मान बाहाके थाइरे बजरनि थाइचक निनि सपेदारक नुग आमहारक नों बाहाके नायखेनि खाय तनिमान
0: अबरक न बरक बुहायनो नायदि बुफांरक न बुहायनो बरक रखायनो बरक रक जेमन आसायखा हांके नुनि थाङिया बरक न बुमा फाचारिना नाङो खानिना नाङो एटलिस्ट सरायफुरु तो किसा जत्न नाङो नु के आमहायनो बरकनो सामुं बुरिना नां कारण सादो कायखायखे तपचिकुन सा जेसु कतरनि बिसिग्लारि कतरि मानायबा सादो हंके कतरिना थांखायखे साद हिलिगु आंबो खिसा मावान सुगुरु हंके चिकन फानों थों किन्तु बरक जरा बरकनि नांमानि जराव बरकनि सामुं मानखायखे बरक तरु तरु लगु बारु थायु आमहायता हंके बरंनो सामुं बुमती खेरिनाय हिमालाय बरंनो खिसा फातारनि मारिनायता फातारनि माने चिनि आगनिनो आमुन बागै हिंखे जों अजे मामि संफुरु रग चिनि किचेन वेस्ट गोबांमान नखरु मुथों थाइथों बुकुर आबरकनो डाइरेक्ट बुरि मानो डाइरेक्ट रिफान रिखांखे तेबसि हाम्मा तो हामु माने ओ सातुंफुरु रगं गामि गथों रगबो सगु गदिबो रगो फानासो बुफां रग हयजाय आं ता फियाबाते केसा ताम प्रब्लेम नुख माले आमते मिगथों थायगथों ओ बथाय रगनि बुकु रग रिखांगै किसा सिनज रगले फायगु किसा कुरमा फान फायगु जानाय मिस्रं रग फान फायगु ओंखा आसोसि आमहाय प्रब्लेम नों एभयड खायना मुसुङो हंखे तो बरकनो आलका कायसा मानैनाउइ ताबुक्त कम्पोस्ट बिन रखन पाता तो अनलाइन बो अभाव करे हायपानो नों आमहाय आसो कस्टलि खायना मुसुङिया हंखे नगो मानै हामियारो गोबांमा स्ताबुं दिनो तो प्लास्टिक कचाम रक गोबांमान दं चिनि बाल्टि कचाम आमति रखफान कायसा नाखा हंखे आजागा नों रुंखा हंखे फियाबा रुङै तनखैबो मोनामना रक चान्स दङ हंखे आमुन बागै सिस्टेम खे माखायनाय दा हंखे आमनो खलबुइ रक मातननाय हिंखे तेबिसा ओ बागान न नुबु फांकायखा हंखे तो ब्लाइ रक तो हायनो
1: कराय
0: करायखा हंखे आमनो फारखे आकुखे जे ब्लाइ रक मानमानि हंखे हा रकबु किसामासा हा रक तो अंगुनु फाथारतै नक बारतैबु फायु गाव तब रंनिबु नखरु आमतिखे जे ओ हा रक न आबरं नु थुमुइ रिखा के हा बाय ब्लाइ कसाम बाय माने बुफां ब्लाइ कथुइर आबरक दालक जाखा हंके ओ
1: कम्पोसाइन
0: थाता आबरक आसं मनामै मेयाता हंके नों आबनो खलबै रिदि मासि रक बाय मेया जा ओ सिनज रक फियाबा खुला हंकेले
1: फायने
0: इ फियक जाक हंकेले ओ सिनज रक फाइ आबनो सानाय तिखलाय गलांनाय आमते रक जाते याते इ गा टक सारो आमते खाइमेते आमनो खलबै तनखांके कायसे आमुन परे सालब्रुम रिरिबै आमनो खलबै तनखांके तीन चार मास हंखा नाबो नरमङैने हा हाय ओङैनाय माने कम्पोस्ट ओङैता कम्पोस्ट ओङैनाय आमनो नोङा बुफां रगो युज खायमानो
1: दैबाय जाखायनाय ना जे दै
0: दैयो बुरि मानो ता कैसा सिस्टेम तो गोबां माखानो आं खायखा कै बाक्साम हाय तलाव दैरुं जाखनाय खायै कायसा कायसा बाल्टिन हंखाबा आं तलाव कपला कपला खायरिखा साखा खाया बुकु रुंखा तलाव खैबो दैरुं जाखनाय आम तांके साकाव किसा किसा दै खरय रिखा आम ते हिंके तैबो डाक्टि सक खाता
1: आबन
0: हिंके उबो दैनो बुनङा बुफां रग एप्लाई खैमान आबो बहायनो बेलाय खेनो अबो फांग्रगनि चामुं काहामता जो तो न्यूट्रिशन आजागा तं जेतु आबो
1: सिद्रा खिबि जाक सामानि बा
0: ओ सामानि आबो थाइनिसि इंनानि गबा आबो तो आ चामुं रग सावइन बरग बो थाइ मानि गाव बो थाइनो तै सखांगै आजागा न आ मानै रग तंता ओके।

आसक जरा खोनाबाय क्या बोरैरं पान्डा नगुल दिनैनि बोरैरं पान्डा नगुलो सात साखाओ सोंबायखो खमताय मोखैथों र' कायमान मककनो दैनि कक्लाम सायखोनारखा मन्जु कलय बिनि बुखक दै दाबो खोनाबायनो दिनैनि खेरामगार पान्डानि पैलानि रिसामुं बादलि देव बर्मानि जादुनि रिसामुंनो खोनारजाबायना

आसुजराते खोनाबायखा तिनि लेखारां बारपाननि पाइथागोरा जामुं सोकां देव बर्मानि रोजाबमुं आकाशवाणि आगरतला ताबु खोनाबायनो तिनि सारिकनि कबरक पान्दानि आवाय बाथांराव तिनि सानजा दामसिनि सानजा दामबा तामिनि सति ब्रैजिबा दामफ्रु स्मृति रेखा चाकमनि रोजाबमुं खोनाजागोन आबोनि आगोलो सानजा दामसिनि दामफ्रु आसु आसुनि खातुंमा पान्दाव तिलकतमा कथमानो सायखोनारोबोनो सकिनि देबर्मा अ तिलकतमा कथमानि पैला बखा खोनार जाखनाय आबनि आगोलो सानजा दामसिनि तामिनि सति नैजि दामफ्रु पूर्ण रूपिणीनि जादुनि रेजाबुनो खोनार जागोन आसुजरा खोनाबायखा तिनिनि सारिकनि कक बरक पान्दानि आवायबो दांग्रो

0: उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এবারে আপনারা শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। প্রথম গানটি আপনারা শুনবেন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्यिक कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में

0: निरंतर काम कर रही है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा, ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
2: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत

0: प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
2: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई हैं,

0: ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई हैं। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरेना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-4812-3717-1717-1 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এবারে আপনাদের জানিয়ে দেব আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। আগরতলা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে যে আজ আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতও দেখা যায়। আগামী 24 ঘন্টার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে যথাক্রমে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। আগরতলার বিমানবন্দর পরিলক্ষিত আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 97% এবং সর্বনিম্ন 66%। এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের সবকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তো রয়েছেই, তার পাশাপাশি রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জেলা, ঊনকোটি জেলা, ধলাই জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং গোমতি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। শুনলেন আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। এবারে আপনাদের জানিয়ে দেব আমাদের আজকের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে। বিকেল 5:10 আপনারা শুনবেন হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান চিত্রগীতি। বিকেল 5:45 চাকমা গান শুনবেন শিল্পী স্মৃতি রেখা চাকমা। সন্ধ্যে 6:05 শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে তাপমাত্রা এবং তার পরিণাম প্রসঙ্গে পাঠ দেবেন কিষানগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবব্রত রক্ষিত। সন্ধ্যে 6:30 ঘর গৃহস্থীর আসরে সবজি ও পুষ্টি প্রসঙ্গে ডক্টর ত্রিদীপ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে। পরে লোকগীতি শুনবেন শচীন দেববর্মনের কণ্ঠে। সন্ধে সাতটায় শুনবেন ককবরক অনুষ্ঠান, রাত ৮:০৫ মিনিটে শুনবেন সংবাদ বিচিত্রা, রাত ৮:১৫ মিনিটে

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: Ours is a very trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: Ratification likely in the coming future.
0: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री

0: ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्यनिकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এতক্ষণ চাকমা গান শুনলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন স্মৃতিরেখা চাকমা। আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली

0: nâng tabu pas maso nin bo go sarai ble nâng ba khai no ni ni sai san tiếng này ni ni sai ra to so sa này ni ni sai rang pu chan ni bia lung la ku nu mai kol san ni bia lung la mai yo hani bo no khai nâng pura pura lo chi si ble
1: sai re kata
0: sai re kata khom tia bu ji di da sa mai ngai o a hai da baba ji sa i a hai no ए बरन नु जखदो सराय साखे ने सराय दो जावै नंग तंगले तंगबाय सना साबाय दालान खमु जों नो साइमाय या सिबाय समते रुंग नाय हगाय आबो बासै सोंग जतो खनाय तंगु गानाव खै नंग फन खनाय तंग लाखा ता
2: आ
0: ना खनाय तंग
2: आबो को तिलक तो माने बिहि तक लाखा
0: तिलक ता मासे
2: अ तिलक ता माताबो
0: आ तिलक ता माने बिनि बुनु खै किशुकुमार
2: ओ
0: किशुकुमार ता
2: हासिना
0: किशुकु माने बिहि तिलक तामा
1: कुसुनी बिहि
0: कुसु जतन कुसु दो बुझि दे
2: आको दो सानाबा
0: गैना मो बुसाई बुसाई तो मंगनो राजा तो जाखाय तो बिसंग तो सांग नांग जांगला
1: आ
0: थांगोस्ता फायोस्ता खलाय जांग नाय
1: कुसुनी बिहि तो तिसे अ कुसुनी बसा तो तिसे
0: कुसुनी बसा तो तै गै सुगो खारा रक ताम खाय तंग नाय जान मनाय बिहि
1: आवन ता कुकुन
0: बिहि कुयानी बिहि आ बा बुबासे ओखारा करा बुदि खायो गांता
2: सांग नांग जागला खंता
0: सांग नांग जागला
2: बरनि वान सुमानि
1: बरक सिद्रा
0: बरक दा समाय बर आबो बुजि तंग खाता
2: आ
0: बरा जतो जाखाबे सों बर बर सोंनो जाय खायनि ने रि गांसो बागला राखुक सों बागला सोंला बुनि कामला बिनो सों कामल मांगन
2: हाय सुवान सुख तंग ना बर
0: ए हाय वान सुख तंग खा गन्या
2: अलखाय
0: अलखाय ना इंगो बुदि खालेगेदा फाइबेदि फाइबेदि फाइबेदि नेरिन खाबो बाथे यखरना अ गेता म बासे गत बासे बो बासे गत बो बासे गत सङलाय केता अब अखरान सङगो गाय बन बुमा बुफाना रे बेरे ने हनै थांगो बलंग आन्दर खिबे काबो देनि मा साना सिनि किसु को मानो सिनि को सुनो
2: आसे
0: आसे बुदि दि सायखवा नादे बु बासे यखरा हंगाना बताबो साइमान जाया
1: आ
0: बरो तामो बुदिते सालाय तामो खाइलाय बतंग सा ओता
2: बतंग कसंग तंगना सि
0: तंग कसंग तंग जाता बाबा आ खनाय जत ग खनाय तंग बिना गों गों किया त ब आ नोर गेस फा सालाय तंग दे ब नाम लाया गन जखते काम नि फाइबे क्या ताखुक दो फाइबे के ताखु के नि फाइबे के ता कुसु का थांगा गय माने कुसु फागे दे फागे दे फागे दे जतो न एक बाजी दो स आ गन ओ माने कुसु फाइला फाइला किसु कुमा tama ni ni hing no ni ni hing ba khanya nang a din so pro khok lai thina po nang ba khina kare
2: ha si sai tong ha bona
0: e hai sai tong nang ni ni hing no ya ka ya ka nang thui nai ba khanya ni hing ba khanya nang thui nai ha ngai ba a ki si ko ma ba ki ri ja khata
2: ma
0: ngai o ba si ko to tam khanya za tam khanya ba si ko so e bo ba sai su ma khata
2: wa na za tong khata
0: wa na za tong khata ngai hai ya nang ni hing no pas पास पास नि नि तो गोम बले न थाने एबेर न बोलंग आ दर खिबरि दि न बु माने नि न मा न ग हम दे मा बा म न ग सों थांग लाय नि हने तलांग थाने खना खै न गा से हो पाइ करे किछु कुमा आ जा बास को तो बास कुछु आ हिन ता आ
2: बोलो बिन बास नि कोक सें के बोलो
0: आ
2: खिबिना बा
0: आ हम ते असल बा छे न हम ते असल बा छे हो नि ख खदा क उंसा पाके ता बिहिं ना
2: आ
0: मे ता मा सिंग थाय ये बबा ल ग हिम ये बबा ल का मा बाब सों न ग फाजी खना सिंग बेरे ले ये ने नें गाय न
2: जे बिने बासि सों साइ रहमान आप सुन आमा हाय खाय तों
0: हाय खाय तों खता
2: ओ
0: ना समय गाय न ओ बखै बु मा बु फाने न ग थांग जाना बा
2: खातुं खाजा अंग ज तों
0: खाता खातुं खाजा ग ता बु म ज म बालु जा खबा
1: आ बन्ता
0: तिने बो आय आछेने न सोंबायक्या सुबायक्या मा आवान खायदिनि खायक्या सोआन खायदिनि खायक्या निनि सोआन खायदिनि खायक्या बेराय जाना बा
2: आ
0: थांगा थांगा न लांगा खोंजा हरे बुफुर आइनो बुफुर आइनो बुफुर आइनो गन्या आखिन थागोरा बास सिदिब आ उंदे खता बबो बाबिका उ आनि हिनो तो खबि खिबे गायफैना गाय
2: आ
0: बिहि बले
2: आबोंता
0: बको खियापा खायथिङि दंसा
2: आ
0: बुबा जों गोंबाय बाके खिबे गाम रादे ए नै वाना जाका गे
1: तै बसाव गनां बहगो
0: आ ओ बो बो बो खुमदि आबो गुन कक दं खना
1: बरो न
0: कायम बो बिसाव गपा नंग गुन जाखना बले बहगो जों जाखाबा गे मायाव या दिबा
1: बेलाइसि
0: भाके खिबि का बना ने बखै सापों खपों आबो
1: बुरी बका हमंग ना
0: आ को त बुलो खिसि गेबा बुरी बका हमतु बोग न

0: 사람에는
1: 아.
0: 아 가토리아 사보훈다.
2: 아.
1: 벌써 빌볼 필이 사정가 뭐
0: 사정가 때까지 버는 뭐 부심한지.
1: 아본다. 빈
0: 아,
1: 원소
0: 비히
1: 벌써 사정부터.
0: 뭐 하냐 달바니. 뭐 하고 그나. 아 가토리아 비히다.
1: 아까.
0: 가토라나니 이라니 아니 그거 아볼 피네샤니 힌가냐 어 바보 능 아니 바보세 너랑 마이크 동자세니 아는 마이크 정자르디 너랑 마이크 정자세니 아는 부대 카르디 어 아니 바보
1: 또 반응
0: 또
1: 뜨자디
0: 반응 뜨자디 안 녹심 바만이 셔도 어 바보
2: 그 상태
0: 어 바보
2: 체질에 나는 아까 큰아이브
0: 아 거다
1: 에 바이 미는 비는 못 카나 또 얘다 걔는 거토만
0: 아 너로 막 크다 카나 동작 바이
2: मेरे खाना तो खाना
0: ना
2: काम
0: साता कन्यो
1: ए नाना नी
2: काम से मुझे तो खा
1: बोरो आस आ काम का हम्मा ना
0: आगे नाना भी था को साता करना रो आना
2: ओ सोई सुन्यो आ हनो गिस तंग खा
0: ए कन्यो ना
1: वान सुना कला के अब नुगुर तंग खा बे अब
2: हम तक ना
0: थाउगा
1: ओलो खै नाना तम खा
0: काम ओलो खै बो थाका बरी बो उकुलो कुलो हिमी थांगजा कता तेलोक ता मबो बु आ
1: ओ बॉल फिलन युकुलो
0: ए कुलो कुलो थांगजा कता बोलो नोक्सिनी याबा
1: आ
0: कन्या बिही बो नौ फारी दंग फो बियांग थाका बरिशो हनि गेता बु लाथरिया बा बियांग थाका ता मोंग फायाव का नाव बरो उंसै आ बिही बंसै कन हंकन्यो इगो नाहा दे सबा बो आ आ बेया सा
2: आंगले
0: बो देखा बो देखा
1: को तो आंग तो सिते खर्च बरी तो फेन बा
0: आना से सारी मैया नंग अमो तो ता केसा सारी जमान बेया सा नंग मोते बागा बु फंग फेला नै था ताई है मालिया आ बोले ने मो बुसुका
2: ओ
0: आबी ओ मा बो बो याकों कबल कबल ओ मा बाबू तो बो या नांग से थारे पे ओ मा नंग ना मा नंग ना नि मा बो बुजा र मा हर र बुरु र मा हर र बाबू हर र बुरु के आ काथुरिया जबो खाइरो
2: कांता
0: आ आ ताम खाइजा तो बुसि फाक्यांग का बा
1: आ
0: ओम नो फनो किसा पा बागलाई सा मासा लाई जा सिनाचा नि जा खाता काथुरिया जबो
1: आ
0: गन आ तिरोग ता मा मा खै नगो हाब्रे का बबो हाबा हिदे के मायो मा गनाबले
1: आ आमा
2: कोइ तो मा
0: आ आमा आमा हि तो खया कुरो मसे खुलु मुइ तो खान गै नंग बनो ताम खाइ सिना सा दगा मुबांग फेलै यो साला यो फेलै रे साला गना एक दिन सासा गै ना कुनुन्यो साके साके लागि खा
1: कुनुन्यो
0: कुनुन्यो बिन बसला बिन बसला साके का आग ताऊ साइ खना रे ना बा दा समय न खना ना
1: आ आ खना ना मुसुम तो
2: ता आ तेर खना मुसिता
0: आ हवाई खिलो रंग सने वाई रूप है नहीं बोलो और मना ना ना संख्या ले माने हंगाई इनको
1: रसाबुजा रसामुंबरो रसाबुजा
0: ए वाई खेल में कॉक्स माता माँ ये हम लोग ले ले ले ले निकलीता मोटोलाइटा
1: बंदे के आप रसाबु इनको ये वाई खेले
0: ले ले ले ले ले ले ले मना ले निक इनको बुशु को लाइक है बा आ तेरोग तमा बुगाती वो थका दिनो माँ इनको बरो किसा ना आंगाति थंग फागेराना रिरोक सुगेरा खिरि रोकता
1: ओ तिलक तमा साइकलन खाता
0: तिलक तमा साइकल ग बुमा बा कलन खाता
1: आ
0: हंकै दो कलन दिता दाति फाइदे हनि हंकाता बुमा ब
1: आ
0: गन बवाय खेलता ल ल ल ल ल ल दादो ल आ उनको काथोरानि जे खिलेबो बुमा खै गाते थंगो खिरि रोक सुजाता
1: आ
0: रंजनी वाये रूपानी बुदु मनान्यो खिले माने ल ल ल ल मनाय ले असो देना यंगो फैमेने नमा बने कोक्थमा पांगो गताय बांग बसाले ता गाय सुंगन मा हने टोंग खायाव न मा गाय सुंगन बाबो हने टोंग खायाव मा काप खांता
2: ओ सराय दुखु नांग मा
0: हे ओ सराय काप खाता आबु खुया का ए और खे मुख तो खे फाया पु
1: रंजनी
0: ए रंजन बे हेरा मुख तोंग बुदुल
1: मुक्ति को खाता आगे खाना मने ताकार दे ताकार दे सराय रंग नो ने सामने काम तांजन मुक्ति छे
0: ए ए
1: माने अब संग ना बोले नानो नि नाम
0: अब अब अब तिलो ता माने
1: प्रथम संग ना नाम
0: के आ
1: ए भाई सा सुखा संग तिनी बिनो
2: फैमिली
0: आ तिलो ता मबो दातिन फाने नाय के पो काबे छिने मो माना हिने
2: ओ
0: बो तो मामा से माने खसै दं खा काबे या
3: आसुजरा आसु आसिनी खातुमा पांडाओ तिलकतमानी कथमा खानाबाइख्या तबुक जादुनी रेसापुं खानालायन खरांगरवान पूर्ण रूपिणी

खानानि पाइथाक साल सालचिसा सेप्टेम्बर खरसाइमानो बसकांनि नैथि चार सेप्टेम्बर सालो काय बारा चारचिसिनि भिलेज कमिटिनि जतै ब्रै साय बारा चुकुजिसिनि आसुगथायाव भोट नाहार जागोन यां तिनि जुदा जुदा थोंरों बदलनि बखाखतै बाथायनि रक चंबारिबो बाथायनि बागै चंबलाय याफार लायखा लेफुङा ब्लकनि बिडिओ एबा रिटार्निं अफिसार प्रसन्जित भौमिक साका अ ब्लको कायबा भिलेज कमिटिनि चंबारिबो तिनि टिप्रा मथा बदलनि थामचिसुखौ बाथायनि रक चंबलाय रेखा किल्ला बागमा आमचायो कायचि भिलेज कमिटिओ बाथायनि बागै तिनि बिजेपिनि बाथायनि रक चंबलाय रेखा मान्जाखा विधानसभानि स्पीकार रामपद जमातिया माताबारी ब्लको बिजेपि बाथायनि रकनि चंबलाय रेमानि जराव मान्जाखा प्रदेश बिजेपि कास्कु एबा एमएलए अभिषेक देवराय उनकोटि हांकरनि कुमारघाट ब्लको कायचुकु एडिसि भिलेज कमिटिओ बाथायनि बागै तिनिबो जुदा जुदा बदलनि बाथायनि रक चंबलाय रेखा रिटार्निं अफिसार एबा कुमारघाटनि बिडिओ सुशान्त दत्त साका भिलेज कमिटि चंबारि काहाम करोंखे पायरना बागै नांमानि जत' दालनि हाफांनि सामुंग टियार ओंलाय तंखा सिपाइजला हांकरनि काथालिया आरदि ब्लक बिजेपिनि बाथायनि रक तिनि चंबलाय रेखा आरो मान्जाखा आगिनि केन्द्रनि प्रतिमन्त्री प्रतिमा भौमिक एमएलए बिन्दु देवनाथ तै बिजेपि संखालघु मोर्चानि हास्ते कासखौ बिल्लाल मिया सं मोहनबुग ब्लको बिजेपि बाथायनि रक चंबलाय रेमानि जराव लगिव तंखा कचुग्रों मन्त्री किशोर भर्मन मुङिया कामि ब्लकबो बिजेपिनि बाथायनि रक चंबलाय रेखा लगिव तंखा तिप्रा साहामख्राय मन्त्री विकास देवबर्मा भिलेज कमिटि चंबारिव सालथांखां करि जुदा जुदा ब्लक रगो याक्सि बदलनि बाथायनि रकनो चंबारि बलाय जमा रथानि कासुजाखा अ सिलचा मुंबाय याक्सि बदलनि बखाखतै तिनि हांकर नायकलफांनि थानिव डेपुटेशन रैजाखा याक्सि बदलनि बाथायनि रगनि नमिनेशन ब्लाय याफारना जराव कराग नायमाथांग्रोनायनि बागै हांकर नायकलफांनि थानिव सानजाखा सिपिआइएम सालथां हांकर कमिटिनि तांफां रतन दास अ कक्टमा रेखा सदर इन्टार स्कुल क्रिकेट थांलायमाव तिनि आसाम राइफल्स पाब्लिक स्कुल न विकेट कायसुकु बाय मेचेनै चेम्पियन ओंखा बरदवालि हाइस्कुल नेपकु थोंखलाव संसाजाक फाइनाल पुइला बेट खालायना अंखरै आसाम राइफल्स नैसि ओभाराव विकेट गायबा गोमावै रान साराचि तिसाव फिरक मुङ थोंना अंखरै बरदवालि हाइस्कुल विकेट गायसा गोमावै गोप्लाय ओंनानि बागै नांमानि रान तिसायनो हारो गोप्लाय बदलि अनुभव पाल रान दक्षि थाम खालायि प्लेयार अफ द मेच ओंखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बायना एकलजाक जेसि मुकुमो लीग क्रिकेट बाथायलियामाव स्पुलिङ क्लाब गोप्लाय ओंखा नरसिंगरनि टिआइटि थोंखला व सालथामनि थोंलायमाव स्पुलिङ क्लाब विकेट गायब्रैबाय संहति क्लाबनो मेचेनखा पाइथांनि सालो तिनि स्पुलिङ क्लाब अलनि इनिंसो विकेट गोमावै गोप्लायनानि बागै नांमानि रान तिसायनो हारो अ मेचो संहति क्लाबनि इनिंस कायनियो सारा सिनिसितै दक्सिब्रै राननि फिरक मुङ स्पुलिङ पुइला इनिंसो रान सारा नैजिचुखौ खालायमानो याङ एमबिबि स्टेडियामो सालथामनि तै कायसा थोंलायमाव ब्लाड माउथ क्लाबनो केबेङै जयनगर क्रिकेट क्लाब लीड नाहारै द्र ओंखा ब्लाड माउथनि रान थामरानि फिरक मुङ जयनगर क्रिकेट क्लाब पुजा इनिंस लीड नाहारी पाइथाग विकेट गायसिनि गोमावै रान थामरा बासिसा खालायमानो हास्ते बेरामनि सिनियर ब्रै रगनि क्रिकेटो तिनि कायथाम मेच ओंखा मेच गोप्लाय ओंखा विशालघर सान्तिर बाजार तै लंतराय भेली जामजुरि थोंखलाव संसाजाक थोंलायमाव विशालघर विकेट गायसुखौ बाय कयला सहरनो बायखुरा रोंनक थोंनखलाव संसाजाक मेचो सान्तिर बाजार विकेट गायसिबाय साब्रमनो तै विद्यापीठ मिलन स्टेडियामाव संसाजाक मेचो लंत्राय भेली विकेट गायसारबाय कमलपुरनो मेचेनखा ताबुक नबाटिबानि कक्तमा बेसकां दामनैसिब्रियो सालसि खुवाय सालग्रा गुमति हांकर फेरांकगै गोबां वाटै वावै मानो होनै हजाग खालाय रेखा नबाटिबा नायखं खना तुंमारि टङानो साखाव थामसि थाम डिग्री तै खामाव नैजिद' डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तिनि तुंमारि टङानि साखाव थामजिबा डिग्री तै खामाव नैजिद' दशमिक ब्रै डिग्री सेल्सियास कक्टमा पाइनानि सेकां कक्टमा बरक दायसा परिफिर' राष्ट्रपक्षरु याक्सु सि पि राधाकृष्णन सिक्लारकनो फेक मुंबाय चालै तंनानि तै फेक मुं कारजाक हदा सनामति सानाव नांमानि बारजा यासाकना कबो मुंना रेखा नैसाय नैसिद' बिसिनि फिल चुकु पोषणमा सोरोंसालो बारानसिव चेङि रेजागोन एडिसि भिलेज कमिटि चंबारिव चंबलाय याफारनानि खाना पाइथाक साल सदर इन्टार स्कुल क्रिकेट थोंलायमाव चेम्पियन ओंखा बरदवालि हाइस्कुल कक्तमा तिनिनि बागै अरन' पाइखा उल्लेख कक्टमा आवाय ओंगानो खोना फुं दामसिनि सति ब्रैसिव'

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव

0: लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, फड़जी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together,

0: पॉसिबिलिटीज बिकम प्रोग्रेस। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीयों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
2: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार।

0: जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
4: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
3: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুনবেন আধুনিক গান। অনুষ্ঠানে শিল্পী অমিত কুমার।